0: सुध्यन्ताम् ज्योतिरहम् विरजामि पाप्मा भूया सग्गस्वाहा
1: स्वाहा
0: भ्यो देवेभ्य स्वाहा
1: भूवाय भूमाय स्वाहा
0: सुदक्षितये स्वाहा
1: सुदक्षितये

0: रक्षरक्षसाईश्वर हरिः ओम तत्सत् श्री साईश्वरार्पणमस्तु।
1: साईराम, हैप्पी लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड टू प्रशांति स्ट्रीम।

0: इस मोहनम भोपाली इस विभास। सो इट्स अ ब्यूटिफुल कॉन्ट्रास्ट अमंग द जस्ट वन नोट विच इज री रे शुद्री एंड रे सा विच मेक्स इट मोर मेडिटेटिव इट एड्स अ फ्लेवर ऑफ मोर डेप्थ इन द नोट एंड वेरी मेस्मराइजिंग रागा एब्सोल्युटली
1: आई मीन द कोमल रे हैज इट्स ओन पावर एंड especially in the mornings as you mentioned
0: yeah it's a morning raga
1: yeah, yeah it's so much it lends itself to contemplation
0: yeah just by singing the notes like

हरि भजन बिना सुख शांति नहीं। हरि भजन बिना सुख शांति नहीं। हरि भजन बिना सुख शांति नहीं। हरि भजन बिना सुख शांति नहीं।

0: पशुपति कन्हैया गजानना पशुपति कन्हैया गजानना परम निरंजन शुभानना
1: ओम परम निरंजन शुभानना।